0: Hey, this is Kid. Hey, this is comedian Kenny Williams. You're listening to YCRadio.org, the voice of today's generation.
1: धोखाधड़ी चेतावनी. अपना क्यों नहीं लॉगिन पासवर्ड या MAF. A. कभी साझा न करें. कृपया निम्नलिखित बातों को याद रखें. अपने पासवर्ड या MAF. A. कारकों को कभी भी किसी के साथ साझा न करें. कैंपस और क्यूनी IT आपसे यह जानकारी कभी नहीं मांगेगा. यदि आपने स्वयं लॉगिन प्रक्रिया शुरू नहीं की है तो किसी भी MAF A. अनुरोध का उत्तर न दें. संदिग्ध या अप्रत्याशित टेक्स्ट संदेशों और ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक न करें और न ही किसी अटैचमेंट को खोलें. यदि आपको लगता है कि आपने अपना पासवर्ड या MAF A कारक साझा कर दिया है, किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक कर दिया है या गलती से कोई संदिग्ध अटैचमेंट खोल लिया है, तो सहायता के लिए अपने कैंपस हेल्प डेस्क से संपर्क करें. यह क्यूनी की ओर से एक धोखाधड़ी चेतावनी घोषणा है.
2: Attention cardinals. CUNY has introduced Accommodate, a centralized system for requesting and managing accessibility services. You can find it on our York College CSD website or by visiting cuny-accommodate.simplicity.com. Students who are already registered with the York College Center for Students with Disabilities must reactivate every semester in Accommodate to receive their accommodations. This includes services such as our extended time on exams, assistive technology, and participation in our laptop loan program. And you know what? Access is simple. You visit cuny-accommodate.simplicity.com and select student. Log in using your CUNY credentials, the same one you use for CUNY First or Brightspace. Now, students who are new to the Center for Students with Disabilities should use Accommodate to begin the accommodation process. Visit the York College CSD website, select Accommodate, complete the virtual application, and follow the prompts to create your profile and submit your documentation. Accommodate allows students to request accommodations efficiently, communicate accommodations to faculty,